0: ये है लाइका रेडियो सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इन अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
3: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Leica Radio. None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
1: Atif Aslam live in the UK.
2: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. 7 stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो भी तो सोया पड़ा है।
1: ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
0: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही करोगे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: ए, ए, अपन को हाथ नहीं लगाना।

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02 03963-5757 Greens by Danube Prime

0: Breaker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
4: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
5: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
4: Pooja Sweets and Savories.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
6: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भाव।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल, मिलिए अनुपमा से.
3: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
4: Presented by South Hall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vitabiotics.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
6: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Back-to-back hits across the Leica Radio Network.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: लीजिए लता जी के बाज में गीता मेरा नाम फिल्म से था ये गाना, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक और उससे पहले आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना मोहम्मद जहूर खयाम के म्यूजिक पर। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहाँ कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपको बता दूं कि आज ऋतु शर्मा स्टूडियो में हाजिर है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आज किसी कारण से रवि शर्मा जी यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनकी जगह इस शो में मैं आपका साथ निभाऊंगी। मैं जानती हूँ आप उन्हें मिस जरूर करेंगे, हम सब करते हैं, लेकिन आज वो नहीं आएंगे, इसलिए इस वीक यानी कि आज और कल मैं आपके साथ ही रहूंगी। फिर मंडे से आप रवि शर्मा जी को सुनेंगे उनके मनोरंजन प्रोग्राम में। लेकिन चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज भी प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक गाने सुनवाती रहूंगी जो आपको पसंद आए, और मौसम भी शानदार है, तो बस आप हमारा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें कि आज 1 पाउंड के बदले में मिलेंगे आपको 127.8 भारतीय रुपए। और याद रखिए ट्रांसफर आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके ऐप के थ्रू करना होगा। लेकिन इस जून में मतलब जून के एंड होने से पहले पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप 1000 पाउंड से ज्यादा भारत भिजवाते हैं तो आपको 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है जब भी आप ट्रांसफर कराएंगे। और अगर आप 2000 पाउंड से ज्यादा का ट्रांसफर कराते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन। Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.
2: ये है Leica Radio
3: लिस्टर। इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
3: हमजा समोसास 3 फॉर 10।
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
3: सुहाना मसालास 2 फॉर 150। रामदेव नमकीन 2 फॉर 149।
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
3: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54U
3: While stocks last.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
11: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
10: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
11: Also explore 2026 cruises.
10: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162-167-225. We're at all protected.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
14: in Dubai.
15: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
16: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
15: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
16: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
2: न्यू हिट्स ऑन लाइक रेडियो।

0: लीजिए किशोरदा की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से था ये गाना जिसे आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन से जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और एक बार फिर से याद दिलाती चलूं कि आप इस शो को रवि शर्मा जी के साथ सुनते आ रहे हैं सालों से, लेकिन आज किसी वजह से रवि शर्मा जी हमारे साथ नहीं है, बिजी है कहीं पर, इसलिए आज और कल उनके जगह इस शो में मैं आपके साथ रहूंगी और मंडे से रवि शर्मा जी अपना शो लेकर आप सबको एंटरटेन करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि ये समय है समाचारों का, लेकिन उससे पहले थैंक यू कहते चले उन सभी लिसनर्स को जिन्होंने बड़े प्यारे मैसेजेस भिजवाए हैं। सहर जी, नरेंद्र पांचाल जी, पुनीता जी, थैंक यू, आई लव यू टू, है ना, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। मानसी जी, किरण जी हैरो से, अर्जुन जी, और ये कौन है जो मुझे लिख रही है, ऋतु शर्मा, नहीं रवि शर्मा जी, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं। और इसके अलावा फारूक जी, हेतल सोलंकी, एजाज जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। मिसेस फेके चियांग हमारे साथ हैं, तोची जी हैं, अनिल सोनी वियाना से हैं, प्रकाश सुथार जी, मिस शेख निर्मला जी और जितने भी साथी जहां कहीं भी साथ दे रहे हैं सभी का स्वागत है इस शो में। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और चलिए अब सुनवाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले आपको बता दें ताज़ा खबर कि मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में आज निधन हो गया। मशहूर उर्दू शायर और साहित्यकार बशीर बद्र का कल यानी कि कल बुधवार को भोपाल में निधन हुआ। वो 91 वर्ष के थे और परिवार के मुताबिक उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया से जूझ रहे थे। परिवार के मुताबिक पिछले कुछ समय से उनकी सेहत लगातार खराब चल रही थी, उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उर्दू शायरी को आसान और बोलचाल की भाषा में नई पहचान देने वाले बशीर बद्र ने पारंपरिक अंदाज से अलग सी अपनी शैली विकसित की थी और उनकी गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव दिखाई देते थे। उनके कई शेर आज भी मुशायरों और सोशल मीडिया पर अक्सर सुनाई देते हैं और साहित्य जगत में 1974 से 1990 के बीच का दौर उनके रचनात्मक जीवन का सबसे अहम समय माना जाता है और इस दौरान उनकी शायरी ने देश और विदेश में पहचान बनाई। केन्या से आ रही खबर है कि केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 छात्रों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए 74 यानी कि 74 अन्य स्टूडेंट्स को अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। केन्या रेड क्रॉस और पुलिस के मुताबिक उतुमिशी गर्ल्स स्कूल में ये आग आज सुबह उस समय लगी जब स्टूडेंट्स सो रहे थे। पुलिस ने कहा कि बचाव और राहत अभियान जारी है। अधिकारी अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं। केन्या रेडक्रॉस ने यह भी बताया कि आपातकालीन सहायता दल मौके पर मौजूद है और सभी को मदद दे रहे हैं और वहां के पुलिस कमांडर मसूद मिवी ने स्कूल के बाहर मौजूद अभिभावकों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद और पीड़ादायक स्थिति है। केन्या के बोर्डिंग स्कूल में आग लगने की घटनाएं असामान्य नहीं है। हाल के वर्षों में ऐसे कई घातक हादसे सामने आए हैं। हॉस्टल में स्टूडेंट्स की ज्यादा तादाद और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन न करना अक्सर बड़ी संख्या में हताहतों की वजह माना जाता है। भारत से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए पार्टी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लो को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता पार्टी की नई अध्यक्षा होंगी जबकि त्रिपुरा में अभिषेक देवराय को पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। एक और खबर आपको सुनवाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी पर संसद परिसर में अपने साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कल्याण बैनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के प्रति स्त्री विरोधी व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और ये शिकायत ऐसे समय पर आई है जब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारत से जुड़ी कुछ और खबरें सुनाएं कि अग्निवीर योजना में बड़े बदलावों की तैयारी हो रही है। रक्षा मंत्रालय अग्निवीर योजना की समीक्षा पूरी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही 25% रिटेंशन यानी कि सेवा में बनाए रखने की जो सीमा है बढ़ाकर 50% से 70% तक करने और तकनीकी पदों के लिए उम्र सीमा बढ़ाने की बड़ी घोषणा हो सकती है। उत्तर और मध्य भारत में भीषण हीट वेव का दौर जारी है। दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कई शहरों में पारा 46 डिग्री से 48 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भी रेड अलर्ट जारी रखा है। वैसे मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे जून के पहले हफ्ते में दक्षिण भारत को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उधर आज सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव देखा गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण आईटी की बैंकिंग शेयरों पर दबाव बना हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की नई कोशिशों के बीच गाजा पट्टी और राफा बॉर्डर पर हवाई हमले जारी हैं। यूएन ने मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की मांग दोहराई है। यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से मिलने वाली नई लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद रशिया ने अपनी सीमा पर सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को और मजबूत कर दिया है और दोनों तरफ से ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। जिनेवा में आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग और डीप फेक से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। और आपको सुनाते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है और देखने की बात होगी कि इस बार आईपीएल का खिताब कौन लेकर जाता है। यही थे आज के प्रमुख समाचार।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या धुन बनाई है रोशन साहब ने ममता फिल्म से, था ये गाना जो सुचित्रा सेन और धर्मेंद्र की एक यादगार फिल्म है। और मुझे याद आया कि लास्ट वीक यादें में हमने राजेश रोशन को याद किया था, उनके भी गाने बहुत सुंदर हैं। और राकेश रोशन की फिल्म्स कमाल की है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और ऋतिक रोशन का डांस कमाल का, यानी कि ये सारी जो रोशन फैमिली है या कहूँ नागरथ फैमिली है, मुझे सब पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं इनकी, जितना भी इन्होंने बॉलीवुड में योगदान दिया है। और निर्मला जी का भी कहना है कि ये गाना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, जिनका भी ये फेवरेट गाना है मैं उन सभी को डेडिकेट करती हूँ। नॉर्थ हॉल से प्रकाश सुतार जी हमारे साथ जुड़े हैं और गिरीश जी भारत से कह रहे हैं कि वीकेंड से पहले आपको सुनना अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वीकेंड शुरू हो गया है क्योंकि उन्हें आदत हो गई है वीकेंड पर मेरी आवाज़ सुनने की। तो वीकेंड आज नहीं, कल से वैसे शुरू हो ही जाता है फ्राइडे से, लेकिन आपको आज से शुरू करना तो आप कर सकते हैं। रानी जी स्लाव से हमारे साथ है, उल्लास शोरंटो से है और नरेंद्र पांचाल जी का कहना है कि शर्मा के बदले शर्मा, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहती हैं नाइस टू हियर योर वॉइस, सो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आपने मैसेज भिजवाया काफी दिनों बाद। और जितने भी साथी साथ दे रहे हैं सभी का एक बार फिर से स्वागत है, किरण जी हरो से एंड ऑफकोर्स हमारे अर्जुन जी। और चलिए अगला गीत, मैं जानती हूँ आप सबका फेवरेट गाना है इंक्लूडिंग मी, उसको बजाने से पहले आपको एक बार चीज फिर से याद दिला दें।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो आपको याद दिला रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं घूमने घामने जाना है तो आप Southall Travel पर फ़ोन कर सकते हैं या उन पर विजिट कीजिए, Southall Travel पर विजिट कीजिए और कॉल कीजिए उन्हें 0208-857-8410 पर। अच्छी डील्स के लिए हॉलीडे डील्स इंक्लूडिंग फ्लाइट्स होटल्स और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है। हम सब जानते हैं कि 40 सालों से ज़्यादा से Southall Travel हमारी सेवा में हर समय उपलब्ध है और इन्हें ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी मिल चुका है। तो उनके साथ घूम कर आइए, बीचेस को एक्सप्लोर कीजिए, सिटीज को घूमिए, अच्छी डील्स पाइए और अपने टिकट्स, अपनी हॉलीडे आज ही बुक कराइए।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
1: Leica Radio.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इन अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
7: Jay's Entertainment laine avi rahya che sakhna re jo husband ji.
6: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasiyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call करो मिस्टर बी 07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सकना रह जो हस्बैंड जी
8: दिस ईद उल अज़हा शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस वेदर यू आर नियर और फार सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेज यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com दिस ईद सेंड मोर देन मनी सेंड जॉय वेस्टर्न यूनियन मेक्स मनी फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज
9: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
11: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com.
13: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: कल्याण जी, आनंद जी के म्यूजिक पर ये गाना कभी पुराना हो ही नहीं सकता। और हमारे गिरीश जी का भी यही कहना है कि ये गाना तो दिल में बसा हुआ है। चलिए, ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया और थैंक यू भावना, आप साथ दे रही हैं और मौसम बहुत गर्म है, गार्डन में बैठकर प्रोग्राम सुन रही हैं। ये समय है गार्डन में पेड़ की छांव में कुछ समय बिताने का, और साथ में लायका हो तो बस कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं, और वैसे ही आप कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। साथ देते रहिए प्रज्ञा, थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए। और बस आपको बता दें कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में न्यूज़ के उस पार होगा चिंता।
1: Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 105.4 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो IPL मैच की बात कर लें, कल राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच था जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है 47 रन से।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Leica Radio.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन
5: तुम्हें दिल लगी।
6: The timeless soul of Quali returns to the stage.
7: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
6: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
7: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
6: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
7: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
6: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Swanscombe in Kent. 8 children are among 10 people who are known to have died during the recent hot weather across the UK. Iranian state media claims Tehran's hit a US airbase overnight after fresh American strikes too. Donald Trump also denied agreeing to some points included in a reported draft peace deal. BP's ousted chairman says lies are being told about him. Albert Manifold's issued his second statement following his removal on Tuesday, disputing alleged conduct issues. And Uber's introduced a feature it says will help passengers feel safer. The taxi app says users can now record the audio of their journeys. The content will be encrypted. From Sky News, I'm Faye De Silva.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: Good morning. आइए बात करते हैं आज के मौसम की और आज एक बार फिर से मौसम काफी गर्मा गर्म रहने वाला है. लंदन में फुल सनी डे है. मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज को टच करेगा और मिडलैंड्स में भी आज टेम्परेचर 28 से 31 के बीच में ही रहेगा.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: Leica Radio. Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio. Chintan.
2: जी हाँ, बिल्कुल, ये है मनोरंजन शो जिसे आप रवि शर्मा जी के साथ सुनते हैं. लेकिन आज और कल किसी वजह से रवि जी यहाँ नहीं आ पाए हैं और इसीलिए उनकी जगह ऋतु शर्मा आपके साथ है. 11:03 हुए हैं और ये समय सालों से निर्धारित है चिंतन के लिए. चिंतन यानी कि आज के विचार के लिए. चिंतन में हमेशा ही ऐसी बात होती है जो आपको कुछ अच्छा या कुछ सोचने समझने पर मजबूर करती है. और आज की कहानी भी हमें कुछ सिखाती है, सिखा कर जाएगी. कभी कभार होता है इंसान अपने जीवन में कुछ पाने के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, अपने फायदे के लिए दूसरों का दिल दुखाता है और अपने मन को समझा लेता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सब कुछ सही किया है. लेकिन वो अपने मन को तो समझा लेता है, लेकिन क्या वो अपनी अंतरात्मा को समझा पाता है? क्या उसके अंदर गिल्ट रहता है? अगर रहता है तो वो इंसान है, और अगर गिल्ट ही नहीं किसी को हर्ट करके तो मेरी समझ में वो इंसान भी नहीं. चलिए सुनाती हूं एक कहानी. एक कहानी एक गांव की. गांव का नाम था सुखदेवपुर और इस गांव में रामेश्वर नाम का एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, बिजनेसमैन. पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी क्योंकि वो बहुत दान पुण्य करता था. कुछ लोग उसे महात्मा कहते थे. लेकिन रामेश्वर के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था. अपने बिजनेस में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए उसने कई बार गलत तरीके अपनाए थे, मिलावटें की थी, कुछ मासूम लोगों को धोखा भी दिया था. और जो भी कोई उसे देखता था बाहर से, सभी लोगों को वो बड़ा ही सुखी, प्रसन्न, अमीर दिखाई देता था, लेकिन

अंदर से उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन की बात है, गांव में एक सिद्ध संत आए। सभी लोग उन संत के दर्शन करने जा रहे थे तो रामेश्वर ने सोचा, मैं भी होकर आता हूं। अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली संत महाराज के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे हर समय एक अनजाना डर सताता रहता है, कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताइए। उन संत महात्मा ने रामेश्वर की आंखों में देखा और मुस्कुराए और उन्होंने सोने की थैली रामेश्वर को वापस कर दी और अपने झोले से एक छोटा सा कांच का आईना यानी कि दर्पण निकाला और रामेश्वर को हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, रामेश्वर रोज रात को सोने से पहले एकांत में बैठना और इस दर्पण में अपना चेहरा देखना और खुद से एक सवाल पूछना कि क्या आज मैंने जो भी किया उससे मेरा मन खुश है, क्या आज मेरा कोई भी कर्म किसी की आंखों में आंसू लाने का कारण बना है, बस इतना ही करना। रामेश्वर ने वो दर्पण संत से लिया और वहां से चल दिया और उसने वैसा ही किया जैसा संत ने उससे करने को कहा। पहली रात जब उसने एकांत में दर्पण देखा तो उसे अपने चेहरे के पीछे उन लोगों के रोते हुए चेहरे दिखाई दिए जिसे उसने धोखा दिया था। और ये सब देखकर उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर कर रख दिया। वो समझ गया कि जिसे वो छिपाना चाहता था उसका मन का दर्पण उसे साफ साफ दिखा रहा था। रामेश्वर को एहसास हो गया कि जब तक आपके मन का दर्पण साफ नहीं होगा ना, तब तक जीवन में शांति नहीं मिल सकती। और अगले ही दिन उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। उसने उन सभी लोगों को ढूंढकर उनका पैसा लौटाया जिन्हें उसने धोखा दिया था। उसने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतनी शुरू कर दी और अब वो दान पुण्य सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करता था। कुछ महीनों बाद जब उसने फिर से रात को उसी दर्पण में अपना चेहरा देखा तो इस बार उसे कोई ग्लानि, कोई गिल्ट, कोई डर अपने चेहरे पर नहीं दिखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और सच्ची मुस्कान थी क्योंकि उसका मन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी अदालत जो होती है ना, वो हमारी अंतरात्मा होती है। हम दुनिया की नजरों में कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर हमारे कर्म गलत हैं तो हमारा मन हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक गिल्ट हमेशा मन को कचोटता रहता है, लेकिन अगर कोई इंसान इंसान ही नहीं है जिसे गिल्ट ही नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप इंसान हैं और आपने किसी के साथ गलत काम किया है तो आपके मन में गिल्ट जरूर रहेगा। और जब तक हम अपने मन के दर्पण में बिना किसी डर या शर्म के आंखें डालकर न देख सकें तब तक आपका जीवन व्यर्थ है।
किसी ने सच ही कहा है। तन की सुगराई यानी कि सुंदरता। तन की सुगराई कुछ भी नहीं, मन की सुगराई मान। यानी कि तन की सुंदरता से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। बाहर से आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपका मन विषैला है तो ऐसा इंसान क्या किसी को सुख दे पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि काम ऐसा करें जो आपकी अंतरात्मा को परेशान ना करे, क्योंकि कुछ भी करने के बाद दुनिया को आप कुछ भी कह लीजिए, आप अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते।

0: तन।
1: जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भरे भुले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा आईना है। हम दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से कुछ भी नहीं छुपा सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए बहुत से लोगों को चोट पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ऐसे लोगों से चोट खाई होगी, लेकिन जो लोग चोट पहुंचाते हैं उनके लिए बस यही कहूंगी कि जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। और यही था आज का चिंतन। बहुत सारे साथियों ने आज के चिंतन को पसंद किया है। थैंक यू बुशी से जगजीत सिंह जी, थैंक यू ललित छत्रिसा जी, थैंक यू शेखर आनंद जी, उल्लास जी, थैंक यू गिरी जी, सहर जी, अर्जुन जी, रागिनी जी, थैंक यू नलिनी जी, हरविंदर जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू कहती है। पर ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। सही कहा, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। रानी जी इस्लाव से स्वागत है आपका, थैंक यू। एंड हमारे राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं आपने बड़ी ही सुंदरता पूर्वक चिंतन प्रस्तुत किया है। हम केवल तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब हम अपने अंदरूनी स्वभाव के प्रति सच्चे रहें। बात बिल्कुल सच है। और आज के चिंतन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोच विचार करने वाली हैं। मन का गिल्ट जब रहता है ना तो स्ट्रेस रहता है, और आजकल के जमाने में स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियां देता है, बहुत सारी परेशानियां देता है। इस बारे में बहुत देर तक बातें की जा सकती हैं, लेकिन थैंक यू कहूंगी आज के चिंतन को आप सबने पसंद किया है। लौटते हैं अब आज के बैक टू बैक गीतों की ओर।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.8 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और हाँ, आपको बता दें कि एंड ऑफ जून तक आप £75 का वाउचर पा सकते हैं जब आप ट्रांसफर करते हैं ओवर 1000 pounds, और आप 1 gram गोल्ड कॉइन आपको एवरी वीक मिल सकता है व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio. Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions, only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry.
4: 82 Assistant Street LE12JU. Ya Rolette Hill LE54UN.
3: While stocks last.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner Laika Radio.
6: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
7: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
6: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
7: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
6: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
7: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
6: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Laika Radio.
0: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
0: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
0: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you.
11: Southall Travel, at all protected.
12: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: Be part of a historic grand opening.
15: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
17: Leica Radio.
18: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
16: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
17: Leica Radio.
16: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
7: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience samhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: यस, अपने जमाने की फिल्म ब्लफ मास्टर से था ये गाना, और जिसमें ब्लफ मास्टर बने थे शम्मी कपूर, और उससे पहले मदर इंडिया फिल्म का गीत नौशाद का म्यूजिक। और लीजिए, दो बैक टू बैक क्लासिक गीत आपने सुने। ये है रवि शर्मा जी का मनोरंजन प्रोग्राम, जिसमें आज रितेश शर्मा है आपके साथ। और आप सभी को याद दिला दूं कि रवि जी कहीं बिजी हो गए हैं, किसी वजह से वो याद नहीं आ पाए हैं, इसलिए शो में मैं उनकी जगह आपका साथ दे रही हूँ। मंडे से रवि शर्मा जी फिर होंगे आपके साथ, लेकिन आज और कल इस शो में मैं आपके साथ रहूंगी, और वीकेंड्स पर तो होगा ही हमारा साथ। और हमारी शायद भावना जी या हमारी लिसनर कहती है कि इस बार वीकेंड थोड़ा जल्दी आ गया। यस, आप लोगों को मेरी आवाज वीकेंड पर सुनने की आदत हो गई, और कुछ साथी कहते हैं कि अरे हमने आपकी आवाज़ सुनी और फिर चेक किया कि आज कहीं सैटरडे तो नहीं है। तो आज सैटरडे बिल्कुल भी नहीं है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और फिर आएगा सैटरडे संडे, लेकिन मैं आपके साथ संडे तक रहने वाली हूँ यहाँ पर। मौसम बहुत ही शानदार है, मतलब मेरे लिए तो है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल है। वैसे कल बहुत अच्छा था, कल जब मैं बाहर निकली तो अच्छी खासी हवा चल रही थी, जिसमें ठंडक थी, और न गर्मी थी न ठंडक थी, इतना परफेक्ट वेदर था कल। 26 डिग्री टेम्परेचर मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन आज 2-4 डिग्री थोड़ा आगे चला गया है, तो आज गर्मी हो गई है, जो कुछ लोगों को शायद परेशान कर रही होगी। लेकिन उन लोगों को बता दूं कि मंडे से आपको फिर राहत मिलेगी, क्योंकि मंडे से बारिश भी आने वाली है, बादल भी आने वाले हैं, और मौसम एक बार फिर से ठंडा हो जाएगा। यानी कि अब ऐसे ही चलता रहेगा, किसी दिन ठंडा किसी दिन गर्म, तो बस ऐसा ही चलता रहे। हम तो चाहते हैं एटलीस्ट 2-4 महीने तो हमें ऐसा मौसम देखने को मिले। आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू पुनीता जी, आप कुकिंग कर रही हैं, ये क्या बनाया है? दही वड़ा, ओह माय गॉड, दही वड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, और ये आपने क्या सुंदर बनाया है ना, अनार के दाने वाने डालकर, क्या डिलीशियस दिख रहा है। ये तो नहीं कहूंगी कि लग रहा है, दिख रहा है, एंड आई एम श्योर डिलीशियस होगा। तो बस आप बढ़िया कुकिंग करते जाइए, अच्छे अच्छे गाने मैं हूं ना, मैं सुनवाती रहूंगी। एक और गीत आप सबके लिए।
1: ये है Like a Radio Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किशोरदा और अनुपम की आवाजों में था ये गाना, और एक बार फिर से म्यूजिक राजेश रोशन का। जैकी श्रॉफ डिंपल कपाड़िया की फिल्म, जिसे बनाया था महेश भट्ट ने, और आज काफी दिनों बाद इस गाने को प्रोग्राम में जगह मिली है। आप सबने इस गीत को पसंद किया है। निर्मला जी, आपको ये गीत अच्छा लगता है? चलिए ये गीत आपको डेडिकेट किया।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आप सबके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। थैंक यू प्रीति, आपको भी ये गीत पसंद है, आपको डेडिकेट किया। दिव्या जी हैरो से हैं, भारत गंगाराम जी आप हमारे साथ हैं, नमस्कार। दिनेश पोपट जी आपको भी नमस्कार कहते हैं। चिंतन अच्छा था, थैंक यू भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी मैसेज के लिए। थैंक यू मीना लखानी जी, और आप सब कह रहे हैं कि चिंतन अच्छा था, तो चिंतन में आज बात की गई थी धोखे की। यस, धोखे की। और आपको बता दूं, धोखे से मुझे याद आया कि मैं आजकल ट्रेटर्स देख रही हूँ, जो इंडिया वाला ट्रेटर्स है, यहाँ का तो मैंने देखा है, मुझे सारे बहुत पसंद है और मैं वेट करती हूँ कि कब नया आएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया वाला ट्रेटर बीबीसी आई प्लेयर पर है, आप देख सकते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बताऊंगी नहीं कि उसमें क्या क्या हुआ है, अगर आप शौकीन है तो देखिए, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ लग रही है, मैं वो बोलूंगी नहीं। उसको होस्ट किया है करण जौहर ने, और मेरा मानना है कि शायद कोई और करता तो शायद और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैंने 2-3 एपिसोड ही देखे, और अगर आपको भी पसंद है ये सब तो देखिए, मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है, इंतज़ार रहता है कि कौन आउट होगा नेक्स्ट डे। तो आई प्लेयर पर है इंडिया का ट्रेटर, बताइए, देखिए और फिर मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगा।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है, जिसमें टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस, और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट यूट्यूब, अमेजन, एप्पल, स्पॉटिफाई और जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर जाकर सुन सकते हैं। सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Ye hai
1: Leica Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2020. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: झुक गया आसमान, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू की फिल्म, और राजेंद्र कुमार हुए, शम्मी कपूर हुए, देवानंद हुए, इन सभी के गाने, इन सभी की फिल्मों के गीत इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि मुझे लगता है कि आप सभी को पता है कि गाने की अगली लाइन कौन सी है, म्यूजिक का पीस कौन सा है. यू नो, ये गाने इतने ज्यादा हमारे अंदर रचे बसे हैं कि जब हम इन गानों को किसी के मुंह से सुनते हैं और अगर उसने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो हम फौरन पकड़ लेते हैं कि अरे ये गलत कर दिया. मतलब इतने ज्यादा सुने हुए हैं ये गाने, तभी आपको इतने पसंद है. जासू जी कहती है क्या गाना लगा रही हो ऋतु, ये दोनों मेरे फेवरेट गीत हैं. और यही कहना हमारे महेंद्र बजारिया जी का है. ये वाला गाना जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, और उससे पहले मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, किशोरदा और आशा चिनॉय की आवाज थी. आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और सभी सुनने वालों का स्वागत है इस शो में. और आपको याद दिला दूं कि मैं ऋतु शर्मा हूं, वीकेंड्स पर आपका साथ देती हूं, लेकिन इस शो में सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी. रवि जी आज नहीं आए हैं, कल भी नहीं होंगे आपके साथ, और उनकी जगह इस शो में मैं आपका साथ दूंगी. थैंक यू प्रीति, कहती है तुसी तो कमाल किता. ओह, आप पंजाबी हो क्या? लेकिन आप हमेशा साथ देती हैं और कहती हैं कि ये गर्मी है ना, मेरी वजह से है. मैं अभी भारत होकर आई हूँ और वहीं से ये गर्मी लाई हूँ. वैसे प्रीति आपने अच्छा किया, लेकिन थोड़ी कम ले आती, इतनी ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी. एनीवेज, हम तो एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, और स्वागत है आपका इस शो में. कुछ और मैसेजेस भी आए हैं. अहिर यादव जी, आप हमें सुन रहे हैं, स्वागत है आपका. गुरुदेव गांजा, आपका भी स्वागत है इस शो में, थैंक यू. और ये मैसेज आया है ज्योति वर्मा, आपका आपने बताया है कि आप द ट्रेटर्स जो इंडिया का है देखा है आपने, पूरा देख लिया है, और आपने अपनी ओपिनियन बताई है कि आपको कैसा लगा. तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा. वैसे मैंने तो अभी शुरुआत की है, अभी 2-3 एपिसोड्स ही देखे हैं, और उसमें कौन कौन आउट हो गया है ये मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपका मजा खराब हो जाएगा, है ना. और ऐसा तो मैं करना नहीं चाहती हूँ.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको दिलाएगा 127.8 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा by SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और एक और चीज याद दिला दें कि before end of June आप को मौका मिल सकता है जीतने का 75 pound का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
1: Leica Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
7: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises.
7: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
13: Atif Aslam live in the UK.
12: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
13: Book your tickets now at AXS.
12: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
13: Exclusive radio partner, Laika Radio.
14: એક ઐતિહાસિક અને દિવ્ય અવસર પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂરનો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બરના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 02033-773-633. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા.
15: Lester Mella is back with exclusive radio partner Laika Radio, August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
16: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
15: Your favorite show on Laika Radio Midlands. You can now listen back at laikaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
17: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply. Affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
18: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
19: Hey, boy!
20: Coast Guard, we're stuck.
17: Okay, help's on its way.
20: Hold on, mate.
21: Shoes tied. Phone.
22: Back before dark, love. Okay.
23: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
15: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at laikagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: 1990 की फिल्म दिल से था ये गाना, जिसका म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने, और इन्हें इस फिल्म में म्यूजिक के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन बाजी माधुरी दीक्षित मार ले गई। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर का। लेकिन गाना बड़ा ही सुंदर है, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, और आप जानते ही हैं कि अनुराधा पौडवाल हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, और ये गाना गुरुदेव आपको बहुत पसंद है। चलिए, आपके नाम पर किया हमने ये गाना, और इसके अलावा फारूक जी आपने भी इस गीत को पसंद किया है, और विजय गुडोरी जी आपका भी मैसेज आया है, आपने लिखा है कि इससे पहले जो आपने श्रीदेवी का मिस्टर इंडिया का गाना बजाया था, उस गाने को सुनकर आपको मेरी याद आ गई। मुझे पता है आपको मेरी याद क्यों आई, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना था और वहाँ पे किसी बॉलीवुड स्टार के तरह ड्रेसअप होना था। अब आजकल पार्टीज जो होती है वो थीम पार्टीज होने लगी हैं, कोई कुछ भी थीम रख देता है, तो उसमें यही थीम था। अब मुझे सूझे ही ना कि मैं क्या बनूं, और वैसे ही मुझे श्रीदेवी ने जैसी साड़ी पहनी है वो कलर की साड़ी मुझे मेरे पास मिल गई, तो बस मेरी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। मैंने कहा चलो श्रीदेवी ही बन जाती हूँ। वो भी एक फन था उनकी तरह पोज देना, लेकिन कहाँ श्रीदेवी की हम कॉपी कर सकते हैं। कमाल की स्टार थी, लेजेंड थी, और बहुत सारे लोगों की फेवरेट थी, उनमें मैं भी एक हूँ। सो थैंक यू, आपने मुझे भी वो सारी यादें ताज़ा करा दी विजय जी, हमेशा ही आप हमारा साथ देते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए अगला गीत मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में साथी फिल्म से था ये गाना, जिसमें राजेंद्र कुमार थे, साथ में थी वैजयंती माला। और ये गाना हम हमारे विजय कुटूरी जी को डेडिकेट करते हैं। और उसके अलावा ये गाना प्रज्ञा आपके भी नाम पर जाता है, और आप इसी गाने को मेरे नाम पर करती हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें,
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं बात करने वाली हूँ उस शो की जिसका नाम है हमारे राम, और ये शो होने जा रहा है एवंतिम अपोलो, लंदन एवंतिम अपोलो में 9 से 12 जुलाई के बीच में। और इसमें राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं राहुल आर बुचार, और रावण बने हैं आशुतोष राणा, जिनकी क्या आवाज है। मैं उनकी कविताएं सुनती हूँ, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, और जिस तरह से वो कविताएं पढ़ते हैं ना, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत पसंद है आशुतोष राणा। इस फिल्म में मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो रावण का कैरेक्टर निभाएंगे तो किस तरह से निभाएंगे। उनकी दमदार आवाज, उनकी शानदार एक्टिंग, मुझे लगता है कमाल होगा। इस शो को अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से टिकट्स बुक कराइए लाइका रेडियो नेटवर्क इस माइथोलॉजिकल शो के, जिसका नाम है हमारे राम, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं। और फिर से याद दिला दूं कि ये शो होने जा रहा है बिटवीन 9th and 12th July एट लंदन्स एवंतिम अपोलो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: लीजिए वन ऑफ माय फेवरेट गाना जो आप सभी का फेवरेट है, और क्या कहूँ आपको, फिर से हम एक बार याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है द आतिफ असलम लंदन कॉन्सर्ट्स के, और वहाँ पर भी आपको कुछ नए जमाने के कुछ आतिफ असलम की आवाज में गाए हुए गीत सुनने को मिलेंगे। और ये शो होने जा रहा है संडे 14 जून एट द O2 लंदन को, O2 लंदन में टिकट्स अवेलेबल है एट AXS एंड द वेन्यू पर, तो आप टिकट्स बुक कराइए। आतिफ असलम के आप फैन हैं और उनको शो सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल इस शो को मिस मत कीजिए।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: और साथ ही साथ अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो वही हम आपको बताएंगे कि साउथ हॉल ट्रैवल से बेहतर और क्या, उनको फोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल पर जाकर और घूम कर आइए बीचेस अच्छी अच्छी सिटीज में, और वो आपको देते हैं न सिर्फ अच्छी डील्स बल्कि फ्लाइट होटल्स भी आप साथ में बुक करा सकते हैं। 40 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं और इन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है, तो हॉलीडे जाने के लिए टिकट बुक कराइए साउथ हॉल ट्रैवल पर जाकर।

0: weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Good afternoon. आइए बात कर लेते हैं आज के मौसम की. और आज मौसम एक बार फिर से गर्मा गर्म रहने वाला है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज और मिनिमम रात में 20 तक रहेगा. और मिडलैंड्स की बात करें तो मिडलैंड्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 से 31 डिग्रीज के बीच में रहेगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, and US. Speak on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands. Bali Brambat.
1: जी हाँ, बाली जी के शो में आपका साथ देंगी सरिता जी. लेकिन कहीं थोड़ा सा फंस गई हैं, आती ही होंगी, इसलिए आपको बता दें कि पहले सुनवाती हूँ दो गाने बैक टू बैक, उसके बाद आप सुनेंगे सरिता जी को सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मबट.
0: Leica
2: Radio. Leica Radio.
0: Let's return to the big. This is Leica Radio, broadcasting mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen world. Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: या अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ है प्रोग्राम में, कुछ गीतों में एक जैसा है, तो आज के प्रोग्राम के इस आवर के गीतों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आवर में हम महबूब खान साहब को याद करेंगे ज़रूर, और बहुत ही बहुत चुनिंदा चुनिंदा गीत आपके लिए मैंने क्यों किए हुए हैं। ये गीत था फ्रॉम द फिल्म मेरे सनम, 1965 की फिल्म थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ में आपने इस गीत को सुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Like a Radio.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: कभी कभी प्रोग्राम में खिचड़ी भी बननी चाहिए, तो आज खिचड़ी बन रही है। मिले जुले गीत है, अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्यून बाय एसी बर्मन साहब। शर्मीली था फिल्म का नाम, राखी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था और लता जी की आवाज में आपने सुना। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। मेरे वो साथी जो ना बहुत देर से मेरे साथ हैं और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा टिल 4 o'clock। मैं किसी के नाम ना भी ले पाऊं तब भी सबको मैसेजेस मैं जरूर भेजती हूं। आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

0: ஐயா ஹாய் ஹாய் ஹாய்
1: वेल, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सैंडी शाह के प्रोग्राम में आप शामिल हैं और वो भी विंटेज गोल्ड? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. विंटेज गाना ज़रूर था, फिल्म का नाम था शराबी. एंड शराबी के वैसे सारे गाने ही बड़े मशहूर हुए थे. मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की यंग आवाज़ों में आपने सुना इस गीत को. होप यू इन्जॉयड इट. डॉक्टर कालरा हमेशा इन गीतों को बहुत पसंद करते हैं. स्वीटी जी, आप भी तो मुझे उम्मीद है आपने इन्जॉय किया.
2: Bali Brahmbhat on Gold Afternoons.
3: Like a gold.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, currency का रेट आपको बता देते हैं. एक पाउंड के बदले आज इंडियन रुपीस मिलेंगे 128.62, पाकिस्तानी रुपीस 374.48, श्रीलंकन रुपीस 442.58, बांग्लादेशी टका 165.5, अफगानी 84.14.
3: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Radio.
4: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: और गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 105 pounds and 75 pence का एक ग्राम सोना.
4: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
5: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
3: Studio 2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio. Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
4: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
5: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
6: खुद से भी ज्यादा.
4: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
6: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
4: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
7: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is Leica Radio across the Midlands.

0: साहब को हम याद करेंगे जो कि एक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और उनके नाम से फिल्में चला करती थी। तो मेरा साथ दीजिएगा, इस आवर में हम महबूब खान साहब को याद करेंगे।
1: Like a radio.
2: Like a radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Like a Radio network.

0: प्रोग्राम के दूसरे भाग में हमने कदम रखा और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट आवर आपने पसंद किया। खिचड़ी पकी थी, यस। इस आवर में महबूब खान साहब को हम याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। आज 28th of May 1964 में 57 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। महबूब खान साहब, जिनका असली नाम था रमज़ान खान, 9th September 1907 में उनका जन्म हुआ था और 28th of May 1964 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग द सोशल एपिक मदर इंडिया, कैसे भूल सकते हैं, इन 1957, विच वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर, टू नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड वॉज अ नॉमिनी फॉर एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। उन्होंने बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में और जितना भी काम किया, यादगार काम किया है। उनकी फिल्मों के नाम मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत अर्ली, वेल 30s में ही उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड इन्होंने भारतीय सिनेमा को मदर इंडिया जैसा एक, जैसे कहते हैं ना, महाकाव्य दिया महबूब खान साहब ने। और उनकी फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरा समाज सांस लेता था। आज हम बात कर रहे हैं जिनकी, उनका भारतीय सिनेमा में महान योगदान रहा है। वो एक बहुत ही माने हुए फिल्मकार है जिसने अपनी फिल्मों से पूरे देश की आत्मा को पर्दे पर उतार दिया। एक ऐसे निर्देशक जिनकी हर कहानी में संघर्ष, जज्बा और इंसानियत की खुशबू थी। और बात मैं कर रही हूँ महबूब खान साहब की, तो उनकी शुरुआती जीवन के बारे में भी बताऊंगी, उन्होंने किस तरह से इस फील्ड में कदम रखा था। लेकिन आइए आप जरा आगे नेक्स्ट ये काम कर।
1: बाली ब्रह्मभट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK वालों के जरिए पैसे अगर आप इंडिया में भेजना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to 128 rupees and 25 paisas. It depends कितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
3: हमजा समोसास 3 for 10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: While stocks last.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
10: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
11: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
12: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग,
13: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी।
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
15: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
16: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
2: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: वन ऑफ माय फेवरेट्स टू, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। सन ऑफ इंडिया फिल्म से मैंने इस गीत को चुना था, 1962 की फिल्म थी। तो शुरुआती जीवन की बात करें तो महबूब खान साहब का जन्म 1907 में गुजरात के बिलीमोरा में हुआ था। कहते हैं कि सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता है और महबूब साहब का सपना उन्हें मुंबई ले आया। मुंबई में उन्होंने शुरुआत में एक असबल में भी काम किया था एंड फिर फिल्मों में एक्स्ट्रा बने और धीरे धीरे निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। 1935 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म अल हिलाल बनाई और यहीं से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: महबूब खान साहब की फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती थी बल्कि पूरा समाज सांस लेता। औरत 1940 में बनी थी जिसमें एक गांव की ग्रामीण भारत की पीड़ा और संघर्ष को दिखाया गया। फिर बनाई उन्होंने अंदाज 1949 में दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस की तिकड़ी वाली सुपर हिट फिल्म। देन ऑन इन 1951 भारत की पहली टेक्निकल फिल्म बनी थी ये। और देन अमर इन 1954 सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक बहुत ही सीरियस फिल्म थी, संवेदनशील जिसे कहते हैं वैसी फिल्म थी। और फिर आई वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया और वो फिल्म थी मदर इंडिया, एक महाकाव्य। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय नारी की शक्ति, त्याग और संघर्ष का प्रतीक बन गई। नरगिस के अभिनय ने इस किरदार को अमर कर दिया था, अमर बना दिया था। फिर ये फिल्म ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के रूप में गई थी और ये भारत की पहली ऑस्कर नामांकित फिल्म बनी थी। एंड और भी बातें हैं, बताऊंगी थोड़ी बहुत साथ साथ, पर साथ साथ गीत भी।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: Like a radio. Like a radio network is the exclusive radio partner of the Atif Aslam London concert taking place on Sunday, 14th June at the O2 London. Tickets are available at AXS and the venue.
2: मैं हूं बाली ब्रह्मट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: मॉम आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर, माय हेयर इज गेटिंग वर्स, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग वर्क्स।
3: बेटा यू आर नॉट अलोन, फॉर 5 जनरेशंस आवर फैमिली ट्रस्टेड वन थिंग, प्योर हर्बल केयर, आमला, ब्रिंगराज, नीम, रियल इंग्रेडिएंट्स, नॉट केमिकल्स।
2: सो वेयर डू वी फाइंड समथिंग लाइक दैट नाउ?
3: राइट हियर इन लंदन, बैद्यनाथ सिद्धायु हेयर ऑयल, शैम्पू एंड टूथपेस्ट, प्योर आयुर्वेदिक प्रीमियम एंड मेड द वे आवर एल्डर्स यूज इट।
4: फ्रॉम द House of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
7: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
8: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
7: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
8: दिल तो टूट पे किया,
7: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
9: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
7: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियां, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
6: इट वॉज जस्ट अनदर डे, अ फेमिलियर ड्राइव थ्रू फेमिलियर कंट्री, बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर केम द अनएक्सपेक्टेड। He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
5: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. This is Leica Radio across the Midlands.

0: अरे भाई बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं गीतों की और सब बहुत पसंद कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। महबूब खान साहब ने एक मिसाल कायम की थी, 1963 में महबूब खान साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उनकी फिल्में आज भी जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए एक पाठशाला है कि उन्होंने ये बताया कि हिंदी सिनेमा जो है सिर्फ मनोरंजन एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि समाज का एक आईना भी है। महबूब खान साहब भले ही 1964 में इस दुनिया से चले गए लेकिन उनकी बनाई कहानियां, उनके किरदार और उनका सिनेमा आज भी जिंदा है क्योंकि सच्ची कला कभी मरती नहीं है, वो पीढ़ियों तक इसी तरह से दिलों में बसती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आपने ज़रूर पसंद की है।
1: बाली ब्रह्मभट्ट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आइए एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दें। इंडियन रुपीस आपको मिल सकते हैं एक पाउंड के बदले 128.62, पाकिस्तानी रुपीस 374.48, श्रीलंकन रुपीस 442.58, बांग्लादेशी टका आपको मिलेंगे 165.3, अफगान अफगानी 84.14.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 105 pounds and 75 pence का 1 gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. LIKA Radio. Are you listening? LIKA Radio is now available across Wolverhampton on DAB.

0: प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर और दो बैक टू बैक गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने नरसिम्हा से चुना था 1991 की फिल्म और दूसरा गीत फिल्म दहलीज से था. पहले गीत में आवाजें उदित नारायण की थी और साथ कौन दे रही थी, अलका याग्निक. एंड इस फिल्म में थे विवेक मुश्रान और साथ में थी उर्मिला मातोंडकर. उर्मिला मातोंडकर ने काफ़ी फिल्मों में बाद में काम किया लेकिन विवेक मुश्रान बहुत ज़्यादा नहीं फिल्मों में आए थे. आई थिंक विवेक मुश्रान ही थे. एनीवे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट किया जा सकता है. एंड दूसरे गीत में आवाज़ें थी आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर साहब की. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए. अभी अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम. आपने पिछले दो घंटे का प्रोग्राम मिस कर दिया तो ऐसा मत किया करें. एक बजे से लेकर चार बजे तक आजकल मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ सिटिंग इन फॉर वन एंड ओनली बाली ब्रम्बर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to कितने पैसे, 128 rupees and 25 pesos. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
12: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
11: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
13: कार्डिफ, गेट रेडी फॉर द टेस्ट ऑफ मुंबई.
3: SKVP opens from the 30th of May at 111 Queen Street, Cardiff, bringing authentic Indian street food and big flavour to the heart of the city. From your favourite Mumbai-style bites, find it all at SKVP Cardiff. Visit SKVP 111 Queen Street, Cardiff.
13: Leicester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
14: Yeah, Leica.

0: बहुत प्यारा गीत था जो मैंने चुना था, जीना तेरी गली में फिल्म से, 1991 की फिल्म थी। वैसे तो अनुराधा जी ने बहुत से सोलो सॉन्ग्स भी गाए हैं और बड़े मशहूर गाने हैं, लेकिन मैंने चुना ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ों में, मेरी जिंदगी तेरे नाम। बहुत अच्छा गीत था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। आइए अब आगे बढ़े।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड यप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK.
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
3: पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
4: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
5: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
4: Pooja Sweets and Savories.
6: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
7: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
8: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
9: खुद से भी ज्यादा.
7: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
9: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
7: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
6: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What an absolutely stunning song that is. That is from the film that is Savaria. Taking you back to 2007, that is the year I graduated university. This is You Shobnabi, Bharati Gohil, on the roller coaster. Radio Wallis, of course.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Okay, gold is trading at £107.92 per gram.
1: Ram Jewelers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 karat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208890880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
8: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham.
9: Where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
8: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
9: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
8: For sponsorship and details, call 07803 633 926. Is that a horse?

0: ये है लाइका रेडियो सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो
1: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
2: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
1: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा Pride.co.uk. Sakina Rejo, husband ji.
3: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.